0: Baker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल or protected.
3: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
6: Leica Radio.
5: Sounding good throughout the night. With the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भखाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भाव।

अनाथ अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11.
0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
0: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
2: Danube 11, 11. Danube Properties.
4: नोक झोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिकी, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
5: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।

0: soft gloss, other stop gloss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
3: ये है लाइका.

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, LeicaRadio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहाँ से ही झगड़ा चला था भाई।
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
5: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
7: It's summer on the Leica Radio Network.

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
2: I happen to happy valley.
1: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
1: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
1: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
4: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
5: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.

0: ये है लाइका रेडियो लेस्टर। तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
1: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: Maharaja Tours ke saath Nepal aur Bhutan ki adhyatmik yatra par chaliye. Apna sukoon dhundiye. Himalay ki khoobsurat wadiyon, prachin monasteries, rang-birangi sanskrit और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।

குட் மார்னிங். स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: मंगलवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 25 तारीख। और बहनों भाइयों, कुछ यादें कुछ बातें जुड़ी हैं आज के दिन के साथ, और कुछ अब जोड़ेंगे। आज के दिन के इतिहास पर नजर डालें तो वह ब्रिटिश भारतीय फौज में, आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में हिंदुस्तानी सैनिकों की क्या भूमिका रही थी, लेकिन 1917 में जो अधिकार जो थे सैनिक थे ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तान के, उन्हें पहली बार किंग्स कमीशन दिया गया था। नहीं तो वो सिपाही रहते थे, फिर उन्हें तरक्की दी गई थी। 1957 में भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप जीती थी। 2003 में मुंबई में 25 अगस्त को दो बम धमाके हुए थे, पूरे देश को झकझोर दिया था उन्हें। आज राज कपूर के बेटे राजीव कपूर की जयंती भी पड़ती भाई। जन्म उनका 25 अगस्त 1962 में हुआ था, वो दुनिया में अब नहीं है। हरियाणा की एक पहलवान लड़की विनेश फोगाट भी आज ही के दिन जन्मी थी, 25 अगस्त 1994 में। कई लोगों की पुण्यतिथि, उनमें एक वर्ल्ड फेमस नील आर्मस्ट्रांग की भी आज बरसी है, चांद पर पहला कदम रखने वाले, इनकी आज पुण्यतिथि है। 25 अगस्त 2012 में उनकी डेथ हुई थी।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.
0: जो मेरे हाथ में है तेरा करम तेरी इनायत है, जो मेरे वास्ते जीते जी ये दुनिया ही जन्नत है। नजर भर के तुझे देखूं तो ईमान डोल जाता है, तुझे नजरें झुकाकर देखना मेरी इबादत है। मेरा कल आज और कल की फकत इतनी कहानी है कि थी उस भी कल भी थी, कल भी और कल भी होगी, आज भी तुझसे मोहब्बत है। तू मेरी आरजू पहली, तू मेरी आरजू पहली, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश, तू दौलत है, तू आदत है, तू राहत है, तू चाहत है। किसकी बात कर रहा हूं? वही जो सपने में मिलती है, रियल में नहीं।

0: चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में ये गीत दिले नादान फिल्म से हमने आपको सुनवाया। और इससे पहले भाई जिस गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। भाई ये जो लड़कियां सपने में मिलती है ना, ये याद भी नहीं रहती, क्योंकि सपना ऐसी चीज होता है जो बड़ी जल्दी भूल जाता है व्यक्ति। कुछ थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद होता है, वो भी अगर जागने के से थोड़ी देर पहले आए सपना तो। लेकिन रात में कई सपने ऐसे आते हैं जो रात में गायब हो जाते हैं दिलो दिमाग से, सूझते नहीं। अब उस लड़की को कहाँ ढूंढे जो सपने में मिलती है, आकर के रियल में नहीं मिलती। देखते हैं सपने, पर स्वप्न का मतलब ये भी तो होता है ना कि हम क्रिएट करते हैं। ऊपर वाले की दुनिया से संतुष्ट नहीं हो करके, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम अपनी दुनिया जो क्रिएट करते हैं उसको ही स्वपन कहते हैं, अपनापन, स्वपन। और उसमें भाई फिर जो चीज़ें दिन भर हमने सोची हैं, देखी हैं, गुजरे हैं, या महीने भर या साल पहले कुछ ऐसा हुआ है, वो धुंधली यादें रह गई, या फिर उनमें से हम सपना क्रिएट करते हैं। तो कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, छड़ यार की रखिया सच्ची गल्ला काम की बात करिए, बता के पाउंड का रेट क्या चल रहा है एसबीआई में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, रेट अच्छा चल रहा है। अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं भारत में, तो आज का रेट है फॉर वन पाउंड यू कैन गेट 130.1 रुपीज, 130 रुपए और 10 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप, बट रिमेम्बर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
3: T's and C's apply.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
9: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk or call 07956154846.
10: आई हैपन से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
11: इट्स बैक एंड इट्स बिगर.
12: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
11: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
12: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
11: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
13: Leicester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Leica Radio.
14: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
15: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
16: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Take my phone. Why do I need to take my...
17: Here, boy!
18: Coast Guard, we're stuck.
19: Okay, help's on its way.
18: Hold on, mate.
20: Shoes, tide, phone.
21: Back before dark, love. Okay.
22: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
14: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and...

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: बस 3 दिन बाकी। इस रक्षाबंधन खुशियों और स्वाद का जश्न मनाइए जैमिन फूड्स, रिश्तों में मिठास हर सेलिब्रेशन के साथ।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया है। भारत के कर्नाटक राज्य में अमेजन स्टार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिका ने सीरिया को 47 साल के बाद आतंकवाद यानी टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट से हटा लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को नई धमकी, ऑटो सेक्टर पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। पर पहले यह खबर भारत से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारत में जाति जनगणना की प्रक्रिया पर प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि लोकसभा में लीडर प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक साझा लेटर लिखकर जाति गणना की मौजूदा प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि हमारी मांग साफ है, मौजूदा प्रश्नावली रद्द हो, जातियों की जो है सर्टिफाइड लिस्ट के आधार पर नई प्रश्नावली बने, नए सवाल पूछे जाएं और राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स और जनता से व्यापक सलाह मशवरा किया जाए। स्कूल में हिजाब पहनने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली एक मुस्लिम लड़की की याचिका खारिज कर दी है। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर सकी जिससे ये साबित हो सके कि इस्लाम में हिजाब पहनना एक जरूरी धार्मिक रस्म है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान, सद्भावनापूर्ण और गैर भेदभाव भावपूर्ण है तो उसे बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने 47 साल के बाद सीरिया को टेररिज्म बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट से हटा दिया है। सीरिया के हटने के बाद अमेरिका की इस लिस्ट में केवल 3 देश बचे हैं जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा हैं। आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी के ईरान दौरे में क्या क्या हुआ, खबरें खुलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी का ईरान का एक दिवसीय दौरा पूरा हो गया है। पाकिस्तानी फौज के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस दौरे को लेकर के कुछ बयान जारी किए हैं। ISPR ने कहा कि इस दौरे का मकसद अमेरिका ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करना और बातचीत में आई रुकावट को दूर करना है। ISPR के मुताबिक अलग अलग बैठकों में तनाव को यानी टेंशन को बढ़ने से रोकने, हॉर्मोन स्टेट को फिर से खोलने और स्ट्रगल को जल्द खत्म करने के मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत में डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिली है। समाचार एजेंसी के अनुसार सूत्रों ने मंगलवार को आज ये जानकारी दी है। राम रहीम को अगस्त 2017 में एक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। गुरमीत राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है। इससे पहले उन्हें 30 दिन की पैरोल मिली थी, वहीं जनवरी में 40 दिन की भी पैरोल दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रावत ने अभिनेता आशुतोष राणा, सोनू सूद, अभिनेत्री तापसी पन्नू, राखी सावंत और योग गुरु रामदेव पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कल कहा कि उन्हें असफल लोगों से कोई सलाह नहीं चाहिए, वो उनका ज्ञान नहीं सुनना चाहती। कंगना रानौत ने मीडिया से कहा कि आए दिन इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो या सोनू सूद हो, कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। राखी सावंत जो मेरे कैरेक्टर पर टिप्पणी करती है, तापसी पन्नू जो मेरे माता पिता को अपमानित करती है, इन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि आप अपने और मेरे बराबर 1% भी सफलता हासिल नहीं की है आपने, तो मेरे साथ बराबरी ना करें। मौसम का प्रकोप भाई दिल्ली में और उत्तर भारत में देखा जा सकता है। बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर जाता है। दिल्ली के सेंट्रल ईस्ट, नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और शाहदरा व साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और दिल्ली के दूसरे इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की और भी संभावना जताई जा रही है, आशंका कहेंगे जताई जा रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने की धमकी दी है। कल ट्रंप ने कनाडा के ऑटो सेक्टर पर टैरिफ दोगुना करने की बात कही। ट्रंप का कहना है कि नया टैरिफ 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कल शाम पाकिस्तान के फौज के जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से ईरान के प्रति अपना लहजा और रवैया बदलने की अपील की है। ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि दबाव और धौंस के जरिए आगे बढ़ने से समझौतों को लागू करने का प्रोसेस और मुश्किल हो जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। यह घटना सामने आई है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक हमले के बाद टैंकर का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हुआ है और जहाज डिसेबल हो गया है। सोमवार शाम जारी बयान में UKMT ने बताया है कि तेल टैंकर के कप्तान ने जहाज के एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने की सूचना दी थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

अक्सर कोई लड़की 16वें साल में लड़के को क्या कहती है, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी कि मेरा फोन टॉप अप करा दे।

सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन में। मनोरंजन कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम आपको सुनाते हैं थॉट फॉर द डे। आज का विचार यानी चिंतन, और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हाउंसलो से श्रीमती सारा पटेल का भेजा आलेख। सारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिखती हैं कि हम अक्सर कोई परोपकार का काम करते हैं तो फिर उसका गुणगान करके उसका पुण्य जो है वो क्षीण कर देते हैं। दान पुण्य देना, आप अपने पास से कुछ नहीं देते हैं, जो आपको उसने दिया है उसी के नाम पर आप किसी को कुछ देते हैं। बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है एक कहानी के माध्यम से कि सूफी फकीर हफीज एक जाने माने कवि भी थे यानी शायर। उन्होंने एक गीत लिखा और गीत ऐसा जैसे कोई अपनी प्रेमिका के लिए लिख रहा हो, अपने प्रेमी के लिए। गीत में उसने कहा कि तेरी ठोड़ी पर जो तिल का निशान है ना, जी चाहता है कि उस पर बुखारा वार के दे दूं। बुखारा शहर का नाम है। बुखारा दे दूं या समरकंद। भाई बुखारा और समरकंद इनका मालिक उस समय था तैमूर लंग। आज जब उसके कान में यह गीत बड़ा पॉपुलर हो गया तो वहां तक पहुंचा तो वो बहुत नाराज हो गया। ये कौन होता है समरकंद और बुखारा देने वाला, मैं मालिक हूं। उसने हफीज को पकड़वा कर अपने दरबार में बुलाया और जब वो आया तो उसने कहा कि भाई हद हो गई। पहली बात तो ये कि किसी खूबसूरत औरत की ठोड़ी पर तिल देखकर तुमने ये कविता लिखी है क्या? वो इस काबिल नहीं है कि तुम बुखारा और समरकंद उसे दे दो। दूसरी बात यह कि बुखारा और समरकंद क्या तुम्हारे बाप के हैं जो तुम दे रहे हो? भाई वो मेरे हैं और मैं अभी जिंदा हूं। तुमने मुझसे पूछे बिना ये कविता क्यों लिखी, कैसे लिखी? समरकंद और बुखारा दे दूं तुम्हारे तिल के कारण। हफीज ये बात सुनकर के जोर से हंसने लगा। उसने कहा देखो सुनो, पहले तो जिसके तिल की मैं बात कर रहा हूं ना, ये समरकंद और बुखारा उसी के हैं जिसकी खूबसूरती का मैं बयान कर रहा हूं। वो है ऊपर वाला। तुम बीच में वैसे ही उपद्रव कर रहे हो, मेरा और उसके बीच का संवाद है, बातचीत है। इस सृष्टि के बनाने वाले, खूबसूरती को देने वाले, तिल देने वाले, चेहरा देने वाले, अरे वही है सब कुछ। समरकंद और बुखारा भी उसी के हैं। यानी हफीज जो है वो परमात्मा की बात कर रहा था। और आपको बता दें बहनों भाइयों, सूफी फकीर हमेशा परमात्मा को अपने प्रियतम या प्रियसी के रूप में देखते हैं। हफीज ने आगे कहा कि देखो हर चीज उसी की है, उसी को लौटा देने में क्या लगता है? अरे भाई उसने हमें दिया है, हम थोड़ा सा कुछ भी उसके नाम पर देते हैं तो हम एक चीज जो उसने दी थी उसको लौटा रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? जिसकी है उसी को लौटाने में तुम रुकावट डाल रहे हो, पछताओगे। हफीज ने कहा सुनो, मैं तो गरीब आदमी हूं लेकिन मेरा दिल तो देखो, कुछ मेरे पास नहीं फिर भी मैं बुखारा और समरकंद जो है मैंने दे दिए। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कितने कंजूस हो तुम कि शब्दों से भी नहीं दे पा रहे हो, अल्फाज में भी तुम्हारे यहां देने वाली भावना नहीं है। हफीज की ऐसी बात सुनते ही तैमूर लंग भी हंसने लगा।
1: चिंतन, चिंतन,
0: आंखें खुल गई। देने वाला देता है जो सबको दे दिन रैन। हम लोग अक्सर आरती में गाते हैं तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको अर्पित, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो खाली हाथ आए थे इस दुनिया में, खाली हाथ ही जाएंगे। यहां जो कुछ भी मिला है उसकी कृपा से मिला है। ये भावना मन में आते ही आपका मोह समाप्त हो जाएगा। तन मन धन उसी ने दिया है, उसी को सौंप दो, फिर स्वतंत्र विचरण करो।

0: तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। भाई हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम शब्दों से, मन से, उदारता से अगर प्रभु के कुछ अर्पण करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा पत्थर लगवाने की या एडवर्टाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जो कुछ भी है उसी का है। ये था आज का चिंतन, आज का विचार।
1: चिंतन, चिंतन।
0: आज के चिंतन के लिए हमें आलेख मिला श्रीमती सारा पटेल जी की ओर से। सारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिंतन आपकी भी पहली पसंद है, सुनती भी हैं और सुनवाती भी हैं आप, थैंक यू वेरी मच। और भाई चिंतन की प्रशंसा में और भी बहुत सारे संदेश आ गए हैं, जिनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे अर्जुन जी हैं, नीलम जी हैं, पम्मी स्लाव में, सारा पटेल जी आपने भी धन्यवाद किया कि आपका चिंतन शामिल हुआ। मुझे यकीन था आप तो चिंतन ही नहीं पूरा प्रोग्राम हमेशा सुनती हैं। जगदीश जी बुशी में कीर्ति, जय श्री कृष्ण आपको मेरी ओर से, थैंक यू। विजय सटन में निर्मला जी, नैना शाह तो भाई हमारी डिक्शनरी है, कोई भी टॉपिक हो उस पर गीत ढूंढ के हमें सुझा देती हैं, थैंक यू वेरी मच नैना। हरविंदर जी, सो नाइस ऑफ यू, सुखी क्या बात है, एक आप सुखी है, एक हमारे पड़ोस में रहती है खुश दूसरे स्टूडियो में, ये नाम पढ़ करके खुशी होती है। देशराज बैसन साहब क्या कहना आपका, सो नाइस ऑफ यू। भरत गंगाराम, जैस्मीन, विजय, मॉरिशस वाले, हिना, मानसी, रंजन, हेतल सोलंकी, भाई आप सबका बहुत बहुत बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। कीप लिसनिंग। आपको याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, अच्छा रेट है, पैसे भिजवाने हैं भारत तो गंभीरता से विचार कीजिए भाई। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग टूडे 130.1 रुपीज, 130 रुपए और 10 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99। फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
6: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist.
7: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
6: Click Rifko Theatre.com ticketsmarketplace.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
2: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250 376.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
12: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
14: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.

0: क्लासिकल टच है इस गीत में, एंजॉय कीजिए लता जी की आवाज।
1: द वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।

0: लता जी की आवाज में जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, नृत्य यानी भाई वो सांस्कृतिक भाषा है, डांस को नृत्य कहते हैं, लेकिन वो नृत्य जिसे ईश्वर को रिझाया जाता है, जो सिस्टमैटिक स्टडी से सीखा जाता है श्रद्धा पूर्वक। तो साहब ये गीत सुनवाते हुए हमें एक सूचना भी आपके साथ साझा करनी है। अरे सूचना नहीं है भाई, कंपटीशन का ऐलान करना है। आज हमारे कार्यक्रम में कंपटीशन शामिल है। बता दें आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप विद सनातन इवेंट्स टू गिव अवे टिकट्स टू द स्टेज स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी। दिवाली स्टोरी भाई भगवान राम की कथा का के कई अंश जो आप इसमें देख सकेंगे, विच विल बी हेल्ड एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27th September। इसमें भाई एक बात और नोट कर लीजिए, स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM। तो ये पौने घंटे का कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए 5:00 to 5:45 तक, एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 to 9:30 PM, जो है 6:15 to 9:30 तक रात को जो मेन इवेंट होगा। तो इसमें भाई कंपटीशन में हम 2 टिकट्स दे रहे हैं, और किसको जाएंगे टिकट्स ये तो हमारा वो कंप्यूटर बताएगा। आप एंट्री करने के लिए सिर्फ एक शब्द लिख करके भेजिएगा, सेंड द वर्ड दिवाली, DIWALI, ये बेशक कैपिटल में लिख दें। उसके बाद आपको साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए लिखना है अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, भाई ये सारी चीजें आपको लिख करके भेज रही है। लेट मी टेल यू अगेन, विनर्स टिकट्स विल बी सेंट वाया द AXS ऐप, सो प्लीज एंश्योर, मेक श्योर के यू शेयर योर ईमेल एड्रेस दैट इज रजिस्टर्ड टू द ऐप TNC अप्लाई, याद रखिएगा। तो भाई आपका ईमेल एड्रेस जरूर होना चाहिए जो ऐप के साथ रजिस्टर्ड हो, और वर्ड आपको भेजना है दिवाली, नाम और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। स्वागत है आपका, कंपटीशन इज ऑन, 2 टिकट्स दिवाली के सनातन इवेंट्स जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, और डेट भी नोट कर लीजिए 27th September, इट इज संडे। ऑल द बेस्ट, और नंबर तो बताया नहीं मैंने जहां भेजना है, 07424 232323। ये नंबर बताने की आवश्यकता होती है क्या? अरे साहब रट लिया है लोगों ने, तो कईयों ने इतने बार इस नंबर को घुमाया है, हर कंपटीशन में जीतना चाहा है कि उनको वो आंखें बंद करके डायल कर सकते हैं उंगली से, या दबा सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर 07424 232323।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।

शादी ब्याह में भाई ये जो सिटनियां होती है, छेड़खानियां होती हैं, ये दोनों परिवारों को और करीब लाने के लिए होती हैं। इसमें ये ऐसी ऐसी ट्रेडिशंस बनाई हैं लोगों ने कि भाई ये शादी का बंधन जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ता है। सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं बंधन में बंधते हैं, परिवार बंधते हैं, और भाई मर्यादाएं बनती हैं, ट्रेडिशंस बनती हैं। कभी कभी तो दूर देश में शादी होती है ना, विदेशों में, तो दो कल्चर मिलती हैं आपस में, दो भाषाएं जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ। ये शादी भी एक ऐसा संबंध है भाई जो बहुत चीज़ों को जोड़ता है।

0: वैसे तो तुम्ही ने मुझे बदनाम किया है, पर इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। और भाई ये जो लाइन है अच्छा वाली ना स्थाई की, कहते हैं कि संगीतकार रवि साहब ने इसको हर बार, रफी साहब ने इसे हर बार अलग ढंग से गाया, थोड़ा थोड़ा फर्क रखा। और भाई ये गीत काजल फिल्म से था, रफी साहब की आवाज में संगीतकार रवि ने इसे धुन पर बिठाया, ऐसे सुरों से सजाया। राइट, और कौन सुनवा रहा था ये गीत आपको?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Like a extra podcast update.
0: और लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड भाई आ गया है, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शो के होस्टेड बाय दीप राजा। और भाई इसे देखने के लिए आपको हमारा पॉडकास्ट जो है उसे जुड़ना होगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
4: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
5: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th ऑफ सितंबर, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट 7 PM। टिकट्स बुक करें dimontfoorthall.co.uk
6: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 07860-280-655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
7: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाईलैंड, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

गीत को सुनकर आपको फिल्म याद आएगी राम तेरी गंगा मैली। और भाई एक एक्टर भी याद आएगा, वैसे वो एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सभी भूमिकाओं में थोड़ा थोड़ा काम कर चुका था, लेकिन अचानक मौत उसे अपने पंजों में दबा के ले गई। राजीव कपूर।

जल्दी आना तो दोबारा, कहने को कह देते हैं भाई, लेकिन जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आज जन्मदिन है, उनकी याद आती है। राजीव कपूर वॉज बॉर्न ऑन 25th ऑफ अगस्त इन 1960।

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: Let me tell you, the SBI UK giving in exchange with the pound in rupees, भारतीय मुद्रा में करेंसी में ये एक पाउंड के बदले आज दे रहे हैं, इस समय दे रहे हैं 129.8 रुपीज, 129 रुपए और 80 पैसे इस समय रेट चल रहा है, बदलता रहता है तो भाई, पर रेट अच्छा है। अगर आप भेजना चाहें तो यू कैन ट्रांसफर योर मनी वाया ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जाके ऑनलाइन या फिर यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
6: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: It's back and it's bigger.
11: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
10: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
11: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
10: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
12: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
13: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और आप जानते हैं बहनों भाइयों, इस सप्ताह के कलाकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव। भाई सिर्फ श्रीवास्तव का ही तो कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध फिल्मों में इनके गीत, इनका संगीत, इनका व्यवहार भाई याद करते हैं। इनके दोनों बेटे आनंद और मिलिंद, वो भी भाई खूब रंग जमा रहे हैं। चित्रगुप्त साहब, चित्रगुप्त श्रीवास्तव जो कहते हैं, आपको याद होगा एक और संगीतकार के नाम के साथ श्रीवास्तव लगा है, वो है आदेश श्रीवास्तव। वैसे अमिताभ बच्चन भी सरनेम उनका श्रीवास्तव है, वो यूज नहीं करते। भाई आदेश की पत्नी का जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। अगर भाई आपको याद होगा वो फिल्म थी, कौन सी थी, लव स्टोरी, जिसके गीत बड़े सुपरहिट हुए थे। उसमें काम किया था अपनी विजेता पंडित ने, बड़ी खूबसूरत लड़की, जतिन ललित की बहन, मंदिर भी, और भाई पति तो संगीतकार, भाई जतिन ललित और मंदिर ये भी, और बहन सुलक्षणा पंडित गायिका। भाई पर हम उनकी नहीं, उस श्रीवास्तव परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदेश श्रीवास्तव की पत्नी है विजेता और आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। आदेश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे अभी भाई जवां हो गए हैं और उनके लिए अवसर तलाश कर रही है अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में जमाने के लिए। पर बात करें चित्रगुप्त की, तो चित्रगुप्त साहब के गाने एक से बढ़ के एक हिट है साहब। हर त्योहार के लिए, हर मौसम के लिए, हर रंग के लिए और हर मूड के लिए उन्होंने धुने बनाई और वो धुने शब्दों के साथ जुड़कर छाई, संगीत प्रेमियों के दिलों पर छाई, ऊपर आसमान में बुलंदी तक पहुंची।

0: सॉन्ग भाई, ये भाभी फिल्म का गीत आपने सुना, और शायद ब्लैक एंड व्हाइट थी फिल्म, लेकिन साहब गीतों ने ऐसा रंग जमाया, धूम मचाई फिल्म ने, और धूम मचाई चित्रगुप्त जी के संगीत ने। याद दिला दूं, ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक, और उनकी धुनों पर बने बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे संडे तक। जुड़े रहिएगा लाइका गोल्ड के साथ, लाइका रेडियो मिडलैंड के साथ, हम आपको ऐसे ऐसे गीत सुनवाते रहेंगे।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: विजेता पंडित खुद भी गाती हैं भाई, लेकिन जिस फिल्म से उन्होंने नाम कमाया, अपनी जगह बनाई मेन मुख्य भूमिका में हीरोइन की, वो इस फिल्म में आई थी। याद होगा आपको, और याद होगा ये गीत भी, मुझे तो याद है भाई, यूनिवर्सिटी के दिनों में खूब हमने इसको गाया और सुनवाया।

0: मैं आई आई आई आई आ जा। यादें जुड़ी हैं, यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम किया था भाई, उसमें जो यूनिवर्सिटी मिस यूनिवर्सिटी थी हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की, और उसने मेरे साथ रोल किया, तो इस गीत पर हम दोनों ने लिप सर्विस दी थी। तो जब वो कहती थी मैं आई आई आई तो मुझे कहना होता था आ जा, पर इससे पहले मैं कहता पूरा हॉल बोलता सारे लड़के कहते आ जा। नहीं ऐसी बात नहीं है, इतने बुरे हम भी नहीं थे। जब मैं कहता कि मैं आया आया आया तो लड़कियां कहती थी आ जा, लेकिन बहुत कम आवाज आती थी लड़कों की ज्यादा।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Leica Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: उठ सबके कदम देखो रम पम पम।

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और भाई हॉलीडे ब्रेक के लिए याद दिला रहे हैं साउथहॉल ट्रेवल वाले कि भाई वो दुबई के लिए उनके पास फैंटास्टिक डील्स है, वेरी कम्पेटिटिव, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम साउथहॉल ट्रेवल को संपर्क कीजिए उनसे। फोन नंबर है 0208 574 8410। साउथहॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट महाराजा टूर्स डॉट को डॉट यू के और कॉल 07956154846।
2: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
3: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।

0: जिंदगी। Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
3: कंपटीशन का नतीजा निकलने वाला है भाई, दो टिकट्स दांव पर लगे हैं। 27 सितंबर को एक जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और नाम है दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना वेम्बली। दो टिकट्स दांव पर लगे हैं, एंट्री नहीं किया तो कंपटीशन में एंटर हो जाइए।

0: अभी जम जम रही है।
1: Network across London, Manchester and the Midlands. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, Dumontford Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM. Show starts 7 PM. Tickets book kare dumontfordhall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: Travel, auto protected.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Next, Gold Afternoons with Bali Brambat. On Laika Radio Midlands.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Laga gori gujariya se neha hamar hoy gawa sara chaupat mora rojgar o
4: रोजगार चौपट नहीं हुआ भाई, कार्यक्रम का समय हो गया और मुझे बताना है विनर का नाम। तो याद है आपको दिवाली नाम से वो नाटक जिस पर बड़ी तैयारियां चल रही है, जो एक बार हाउसफुल में प्रदर्शित हो चुका है यहाँ। अब आने वाले शो के लिए दो टिकट हम इनाम में दे रहे हैं और आप जानते हैं कब है कहाँ है, मैंने बता दिया है। दिवाली कॉम्पिटिशन में हमने सिर्फ यही मांगा था कि आप दिवाली लिख करके भेजें, साथ में भेजें अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम और अपना फोन नंबर भी। भाई जिन जिन के ये सारी जानकारी नहीं आई है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, क्वालिफाई भी किया, जवाब भी, तो क्या जवाब तो था ही नहीं, बस ये दिवाली लिख रहा था। तो जिन्होंने लिखा, विनर ढूंढना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे कंप्यूटर साहब ने मदद की और जो ड्रॉ में नाम निकला है बताता हूँ अभी।

0: देखे बिना।
1: गीत भोजपुरी भाषा में है, लेकिन भाई मुझे लगता है ये स्टाइल जो है संगीत का, ये नौशाद साहब का हो सकता है। लोक धुन, लोक संगीत और भाषा भी लोक भाषा। पर मुझे बताना है कंपटीशन का नतीजा 27 सितंबर को जो वेम्बली अरेना में शो हो रहा है दिवाली, कौन जा रहे, किन के लिए 2 टिकट सुरक्षित हमारे पास? कॉन्ग्रेचुलेशन किसको दें? आप हैं जनाब, आप कौन? आप हैं शेखर आनंद। आपके टिकट्स भाई आप तक पहुंच जाएंगे, आपका ईमेल एड्रेस हमारे पास है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब जीतने वालों को बधाई, और इसमें तो सभी जीतते हैं, हारता तो कोई है नहीं। पर टिकट जा रहे हैं शेखर आनंद के हिस्से में। कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय द शो। हार जीत तो कॉम्पिटिशन्स में होती है भाई, हार ना हो तो जीत का मजा ही खत्म हो जाएगा।

जीतने वालों को बधाई, और भाई हारा तो कोई है ही नहीं, तो जीतने वालों को बहुत बहुत बधाई और हारने वालों को बहुत सारी तसल्ली। और वह ना भाइयों, अब आगे 1 बजे की खबरों के बाद बाली भाई स्टूडियो में तशरीफ ला रहे हैं, उनका इंतजार कीजिए। और रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। Have a superb day.

0: Wow, what beautiful songs there. And to remember Rajiv Kapoor brings a lump in my throat. Hamara rishta tha ek cricket ka rishta. Jab bhi World Cup hota tha ya IPL hota tha, hum khar mein ek hotel thi jisme Irish bar tha, jahan pe Guinness milti thi. Wahan pe hum milte the aur we used to drink Guinness and watch cricket all day. And my brother Bob also used to join us. He was also very close to Bob. So Rajiv Kapoor, when he passed away, that was a very sad day for me on 9th of February 2021. वैसे आज उनकी 64th birth anniversary है. Born on 25th August 1962. Born in Bombay and died in Mumbai. He got married to Aarti Sabharwal. That was in 2001. Tab umr thi kuch, I think he was 39 years old, yes. And he got divorced in 2003. Lekin kehte hai na, life begins at 40. So, wohi hua. He was active from 1983 to 1999. You can say, again, he got active from 2020 to 2021 for 1 year before he passed away. Lekin 16 saal, 1983 to 1999, kya life rahi? Bahut khoobsurat life thi as an actor, also a producer and a director. Debut film thi Ek Jaan Hai Hum. Ek Jaan Hai Hum ka gaana abhi aapne suna, Yaad Teri Aayegi, Mujhko Bada Sataegi. Shabbir Kumar ne jo gaya tha. And Ram Teri Ganga Maili, that was his father's last direction. Raj Kapoor ji ki aakhri film jo thi, jo jinho unhone bete ke liye direct ki thi, Rajiv Kapoor ke liye, that was Ram Teri Ganga Maili. Kya life thi कपूर खानदान में, अगर लाइफ हो तो और क्या चाहिए था. मतलब के इट वॉज अ वेरी रिच फैमिली विद रिच कल्चर्स एंड जितनी फिल्में इन्होंने की सब अच्छी अच्छी निकली. आसमान फिल्म थी 1984 में, 1985 में लवर बॉय, ज़बरदस्त फिल्म 1985 की हम तो चले परदेश 1988, फिर जिम्मेदार इन 1990. And after which he turned into producing and directing. Aag Ka Darya. Kapoor, he actually acted in the film Aag Ka Darya with legendary actors Dilip Kumar and Rekha, which was shot and completed. But unfortunately, it remains unreleased. Pitaji ke chale jaane ke baad, producer ban gaye popular film Henna in 1991, which was directed by his elder brother Randhir Kapoor. And then 1996 mein directorial debut jo kiya tha, that was the unfortunately unsuccessful film Prem Granth, which starred his brother Rishi Kapoor and Madhuri Dixit. And then 1999 mein one of the producers of Aa Ab Laut Chale. आप लौट चले में मुझे मौका मिला था कुछ गाने गाने का, एंड टू गो एंड सिंग फॉर राज कपूर्स प्रोडक्शन, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. मेरी माँ को जब मैंने कहा मैं राज कपूर जी प्रोडक्शन के लिए मैं गा रहा हूँ, उन्होंने कहा पैसे मत लेना, तुझे तो पैसे देने चाहिए ऐसे बड़े बैनर के लिए काम करने के लिए. एंड मैंने जब ऋषि कपूर और रणधीर कपूर को ये बात कही, उन्होंने सबको बुला लिया आजू बाजू. आई थिंक उस दिन रात को हम ड्रिंक्स पी रहे थे सनी स्टूडियोज़ में. कथुरिया साहब वहाँ बैठे थे, यूज़ टू मैनेज सनी स्टूडियोज़, एंड वहाँ श्रवण जी भी थे. एंड रिकॉर्डिंग के बाद हम बैठ के एक ड्रिंक कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे चेक दिया और मैंने चेक वापस लौटा दिया. तो उन्होंने कहा कि क्यों, फिर मैंने जब कहा तो उन्होंने सबको बुला कर कहा कि ये कोई और ही चीज़ है, इसकी माँ ने कहा कि पैसे मत लेना तो मना कर रहे हैं. सो वी ऑल said cheers and they never forgot this. Hamari dosti wahan se bahut gehri ban gayi. Anyway, hum gaane sunenge aaj Rajiv Kapoor ke. Hamari pyari listener jinhone mujhe kaha ke agar aap ye ट्रिब्यूट कर रहे हो तो फिल्म लावा का गाना, अब मुझे यही देखना पड़ेगा कि उसमें डिंपल कपाड़िया थी लावा में, लेकिन कौन सा गीत उन पे पिक्चराइज हुआ था, क्योंकि डिंपल कपाड़िया, आशा पारेख, राज बब्बर, राजीव कपूर, कुलभूषण खरबंडा, ये सब एक्टर्स जो थे, उसमें से कोई गाना राज बब्बर के ऊपर पिक्चराइज हुआ हो और राजीव कपूर के ऊपर ना हुआ हो, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा गाना उन पे. अगर आपको मालूम हो तो मुझे बता दीजिएगा. यह सो इट विल बी वंडरफुल टू लिसन टू द सॉन्ग्स एज वेल. सुनते रहिएगा, मैं हूं बाली ब्रह्म बटन, लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स इन Greater London and in the Midlands. Ab the show is actually sponsored by Jaimin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you 129.8. I repeat, 129.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
0: If you have just joined in, we are doing a tribute of Rajiv Kapoor, his 64th birth anniversary. Next song from film Aasman.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.

अगला गीत जो है आ अब लौट चले, उसमें जो रैप हुआ है वो मैंने किया है। ये गाना जसपिंदर नरूला ने गाया उसके राइट एट द बिगिनिंग, आई मीन इन बिटवीन मैंने कुछ रैप किया है, सुन लीजिएगा।

0: अब दो खूबसूरत गाने जो आपने सुने, लेकिन अगर मैं आपको इन फिल्मों के बारे में मैं बताऊं और इसके पीछे कौन था, यू वुड से वी डेफिनेटली मस्ट पे अ ट्रिब्यूट टू दिस मैन. यस, अब देखो फिल्म सफर. सफर कितनी सुपर डुपर हिट रही है ना. एंड फिल्म खामोशी वो भी कितनी सुपर डुपर हिट रही. अभी सफर में जैसे एक्टर्स शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, फिरोज खान, अशोक कुमार, और खामोशी में देखा जाए तो एक्ट्रेस वहीदा रहमान, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र हु वाज स्पेशल अपीयरेंस. ऐसे ऐसे एक्टरों को डायरेक्ट करना और संगीत को भी निभाना, जैसे कि खामोशी में जो संगीत दिया दैट वाज एक्चुअली हेमंत कुमार का, क्योंकि फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय हेमंत कुमार. डायरेक्ट किसने की थी अभी बताता हूं मैं. देखो इन फिल्मों के गाने आपने सुने, गुलजार की लिरिक्स फॉर द फिल्म खामोशी और सफर फिल्म, आपने जो गाने सुने, हर एक गाना सुपर डुपर हिट है उस फिल्म का. एंड अवार्ड्स भी कितने जीते. एंड द म्यूजिक वॉज कंपोज बाय ऑफ कोर्स कल्याण जी आनंद जी एंड लिरिक्स बाय इंदिवर जी. अब हम इन सब के लिए हम तालियां मारते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां जाती है द मैन हु एक्चुअली डायरेक्टेड दम, डायरेक्टर असीत सेन. वी डोंट वांट टू कंफ्यूज हिम विद द एक्टर असीत सेन. वी ऑल नो असीत सेन एज द एक्टर वाज आल्सो वेरी पॉपुलर. अब असीत सेन जो डायरेक्टर थे उनके बारे में हम बात करते हैं. He was not only a director, he was also, you can say, multi-talented. He was a cinematographer, screenwriter and documentary films maker in Bengali and Hindi cinema. And also, one of the films was, kaun si thi, ek debut unhone kiya tha, Biplabi. Biplabi was an Assamese film. जिसमें ही वर्क्ड एज एन असिस्टेंट एज वेल. अब डेब्यू था उनका उसमें. असीत सेन वॉज बोर्न ऑन 24th of September 1922 इन बिक्रमपुर इन ढाका दैट इज बांग्लादेश. एंड ही पास्ड अवे ऑन 25th of August इन कोलकाता दैट इज 2001 साल में. And at the age of 78, it is his 25th death anniversary. He directed about 17 to 80 Hindi and Bengali films. And he was active for 35 years from 1948 to 1983. 1948 mein unki umr thi 26 saal ki jab se unhone kaam shuru kiya. तब तक सीखते रहे. एंड देन एट द एज ऑफ 61 इन 1983 ही कॉल्ड इट अ रिटायरमेंट अंटिल ही पास्ड अवे इन एट द एज ऑफ 78. 17 साल रिटायरमेंट में बिताए. अ गुड लाइफ नो डाउट अबाउट इट. अब हिंदी फिल्में अगर मैं बताऊं, अभी मैंने सफर फिल्म का गाना आपको सुनाया, दैट वाज एक्चुअली ओरिजिनली मेड इन बंगाली, विच वॉज चला चल. एंड वो फिल्म फिर सफर बनी. दूसरी फिल्म खामोशी, खामोशी वॉज ऑल्सो अ रीमेक ऑफ अ बंगाली फिल्म दीप ज्वेले जाए. ऐसी फिल्में जो बंगाली में सुपर डुपर हिट थी और इन्होंने हिंदी में बनाई. हाउ कैन वी फॉरगेट अ पर्सन लाइक दिस. जी हां, ही वॉज मैरिड टू रेखा सेन. And they had one son as well. अब करियर के बारे में, स्कूल के बाद हम देखा जाए तो he was drawn towards photography with the help of his uncle who was Ramanand Sen Gupta. अब स्कूल स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो कलकत्ता चले गए, विच इज नाउ कोलकाता. वहां पे रामानंद सेन गुप्ता हिज अंकल वॉज अ क्वाइट एन एस्टैब्लिश्ड सिनेमाटोग्राफर. So Asit Sen started attending shootings of Hindi films and then he joined Bharat Lakshmi Productions as an assistant to D.K. Mehta. Soon he became an assistant to his uncle. Phir Bengali film hui and then he became an independent filmmaker. Pehla passion unka unhone pura kiya because it gave him confidence was a documentary he made following Mahatma Gandhi's tours of Naukhali and Patna. Mahatma Gandhi jab gaye the in jagahon pe Naukhali aur Patna, uske bare mein inhone documentary banayi thi. Usme se confidence gain hua and he made his directorial debut with the Assamese language film Biplabi in 1948. And then उसके बाद चला चल in 1956, which again became the Hindi film Safar. Cut to, let me tell you all the Hindi films that he directed. Pehla Aadmi. That was in 1950 as assistant screenwriter. But that was like experience at the age of 28. Anokhi Raat. Yes, do you remember Sanjeev Kumar ki? That was directed by Asit Sen. Khamoshi jaise maine kaha, Ma aur Mamta, Sharafat 1970 ki film. Phir aayi Anokha Daan 1972 ki. Anadi, not the Raj Kapoor one, but Anadi film in 1975 was directed by Asit Sen. And Bairag, Dilip Kumar Saab and Saira Banu Ji in 1976. Vakil, ek thi Vakil Babu, 1982 ki and then Mehndi in 1983. So, these were the Hindi films that he had actually directed. इन फिल्मों के हम गाने सुनेंगे और उनको ट्रिब्यूट देते हैं. असीत सेन. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स इन ग्रेटर लंदन एंड इन द मिडलैंड्स. वी आर स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can fetch you 129.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply. 129.8 Indian rupees to a pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Jemin Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Jemin Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
5: Back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शन सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
13: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
13: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
15: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Laika Radio.
16: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio Greater London. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

सलील चौधरी का संगीत और योगेश की लिरिक्स। Like a Radio Network. फिल्म खामोशी।

I hope you enjoyed the tribute of Asit Sen. भूलिएगा नहीं इतनी खूबसूरत फिल्मों में जिन्होंने डायरेक्शन किया, जैसे कि सफर, खामोशी, ममता,

कितनी खूबसूरत फिल्म, और गाया कवि प्रदीप ने, लिखा भी कवि प्रदीप जी ने। फिल्म है कभी धूप कभी छांव, 1971 की फिल्म। हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक चित्रगुप्त जी, जिन्होंने ये कंपोज किया।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 Now, APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
7: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.

0: जी हाँ, दो फिल्में और दोनों का टाइटल रंगीला रे। ये फिल्म थी रंगीला और दूसरी है प्रेम पुजारी, उसमें भी एक गाना है। एनीवे, सैंडी शाह इज हियर टू पुश मी आउट ऑफ द स्टूडियोज एंड टेकिंग ओवर, एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इज गोना बी राजपतन। कल तक के लिए इजाजत, बाली ब्रह्म भट्ट का नमस्कार।
1: Cool music for a super hot summer time on the Leica Radio Network.

0: is sponsored by Pepe's. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in-store or relaxing at home.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 grams सिर्फ 1.99 each या 2 for 2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg sir 1099
2: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
8: T's and C's apply.
9: It's back and it's bigger.
10: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
9: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
10: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
9: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Okay, so sending out our birthday wishes to the lovely Austin, who has turned 3 years old today. How lovely. And her grandmother has sent me a lovely picture of her, a kind of painting thing, and it's a lovely unicorn as well. So wishing you a very, very happy birthday.
1: Hey, Laika Radio. अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.

0: Okay, so the final question I asked you was, which 90s film soundtrack included Ye Gali Gali Aake? So two people got it absolutely right. Pooja and Jayshree, you guys were on the money. The answer, of course, is Bazigar, taking you back to 1993. Absolutely loving that. Okay, we are moving to the final hour of Radio Wally's Roller Coaster, which means that is the Lazy Lounge, and I will see you after the messages.
1: Like a radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Lister LE1 2JU and 2A Rollout Cell Lister LE5 4UN.
5: I have been happy Wally feeling like a Diwali.
6: It's back and it's bigger.
7: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
7: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
10: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
11: Hey, boy!
12: Coast Guard, we're stuck.
9: Okay, help's on its way.
12: Hold on, mate.
13: Shoes tied. Phone.
14: Back before dark, love. Okay.
15: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
16: Hiya, it's me, Raj Badin. Catch me every weekday afternoon with my Choice Active, Filmy Scramble, A Lyrical Miracle and The Big Question. That's 4 p.m. on Leica Radio Greater London and Leica Radio Midlands.

0: my goodness, one of the most beautiful track of the 90s. This is taking you back to 1995 with the film that is Bombay Kehanahikya. How beautiful is that? Okay, guess what? It is time for me to say goodbye. Thank you so much for your company. I have been Annika covering Radio Ali's roller coaster. I will be back tomorrow where we are going to be doing, guess what, in the second hour, all things noughties. And then, of course, on Thursday, back to the 90s as well. And then don't forget on Friday, my show, which is Weekend Drive between 4 and 7. So have an amazing evening and I will see you tomorrow.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
2: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक वॉयल अब Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November an unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org brought to you by Sanathan Events
5: exclusive radio partner Leica Radio Network
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
8: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
7: Next, the biggest Asian love songs with Love Sound on Leica Radio Midlands. Radio Wally, with the biggest hits for your weeknights on Leica Radio. This week's number one on the Leica Chart Show. Tune in every Friday with Annika at 6 p.m. on Leica Radio, Greater London.

0: Laika Radio Punjabi, Laika Radio Mobile App te, laikaradio.com te Alexa, play Laika Radio Punjabi. Punjabi.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहाँ सही झगड़ा चलता भाई।
5: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
6: Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Midlands, plus our other offerings, Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@laikamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Laika Radio.

0: है लाइका रेडियो। अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
2: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
3: It's back and it's bigger.
0: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vom Jewelers.
3: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
0: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
3: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
3: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound
3: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
1: Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
7: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Raj Badin.
8: Hey up, it's me, Raj Badin. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7pm with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and of course the Punjabi hits. That's me, Raj Badin on Drive.
0: Leica Radio. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.

0: Leica Radio.
1: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties The Buy has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ Travel at all protected.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Easing you through the night with the Midland.